0: और इस सुहाने सफर में मैं रहूंगा आपके साथ विद योर ओन शो मुसाफिर हूँ यारो, अ प्रोग्राम फॉर ऑल दोज लवली पीपल हु आर अवे फ्रॉम देयर होम्स. लेट्स टॉक अबाउट यू एंड योर फेवरेट म्यूजिक विद योर होस्ट जिमी, every Wednesday 7 p.m. on Free FM 89.0.
1: Kia ora. If you're enrolled to vote and we have your email or mobile number, you'll get a reminder email or text from our team soon.
2: Just check your details are correct by 25 October and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.

दोस्तों साथियों को स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के लाइव ब्रॉडकास्ट में. मैं हूं प्रोग्राम का विनेश और शुक्रिया करना चाहेंगे हमेशा आप लोग जुड़ जाते हो इस समय हमारे साथ में. जी हाँ, आज शनिवार है, हम क्राइस्टचर्च में हैं. वेदर काइंड ऑफ मिक्स्ड है, उतना ठंड भी नहीं उतना गर्मी भी नहीं है. इट्स अ बिट क्लाउडी बट आई एम श्योर यू आर ऑल एंजॉइंग योर सेल्फ. अगर आप गाड़ी में जा रहे हो देन प्लीज बी अ लिटिल बिट केयरफुल. और आज का जो प्रोग्राम है, हमारे पास गेस्ट जुड़ चुकी है. वी विल बी टॉकिंग टू तृप्ति कामत जी. And she

He has won a crown recently. उसके पूरे विषय में हम आपको बतलाएंगे, but आपको ये भी याद दिला दे कुछ events यार, चलो Templeton आप जा सकते हो, हरियाली धीती जो I think 5:30 से door open होता है, you can go and enjoy yourself. और उसके बाद में interview के बाद में जुड़े रहिए हमारे साथ में, क्योंकि हमारे पास कुछ songs भी है जो हम आपको सुनाते चलेंगे. तो चलो हम आज का जो इस program शुरू करते हैं, we are going to play a song आपके लिए, और उसके बाद में we are going to be talking to our guest, और उसके बाद